फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के बैसाख मास की 23वीं तिथि तदनुसार 13 मई सन 2026 5:57 होने को हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6 बजने को हैं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को

0: गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम TVK सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब TVK के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को TVK सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक S कामराज को TVK सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन वार।

भूल यदि हो जाए तो चिंता करने की बजाय उसमें सुधार कीजिए। जो कुछ बिगड़ गया हो तो घबराए नहीं, क्योंकि उसका भी उद्धार संभव है। विश्वास बनाए रखें। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार अब यहीं संपन्न होता है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। छह बजकर 35 मिनट पर

नहीं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 187। छह बजकर 45 मिनट पर और शाम को पुनः 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का भाग दूसरा प्रसारित होगा। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे 7:30 पर हम ही राही प्यार की। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे प्रसारित की जाएगी त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। नौ बजकर 30 मिनट पर

सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे प्रसारित की जाएगी त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। नौ पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मनहर उदास पर। 10:00 सुनिएगा सेल्यूलाइट के सितारे। अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की कांचन प्रकाश संगीत से बातचीत। 11:00 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। 11:00 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी और सुरीला सफर आप तय करेंगे 1:00।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे और 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत होगी, खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाते हैं, साड़ियों का संसार जिसके अंतर्गत बात होगी पश्मीना साड़ी की, शब्द हमारे विचार आपके इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी आत्मविश्वास की, और व्यंजन में भेलपुरी और दाबेली के बारे में बताया जाएगा। पिटारा जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज के मेहमान, शाम 4 बजे शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने।

6:35 पर शाम को आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा राग अनुराग। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 8 बजे कार्यक्रम चित्रलोक से पहले 8 बजे रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी ना बाबा ना, लेखन संजय श्रीवास्तव का, निर्देशक गोविंद पारिक। और 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक बैनी दयाल पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। रात 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात। और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस। इसका आप भाग 187 सुनेंगे।

की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है अनूप जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं कि जिनसे आपने तालीम ली और जो आपके लिए बहुत प्रिय हैं, आदरणीय हैं, वो हैं आपके पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। तो आप उनके बारे में बताएं कि उनके जीवन का कौन सा अनमोल दर्शन आपको प्राप्त हुआ।
2: पिताजी बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक रहे, उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में गाया, बहुत लोगों को संगीत सिखाया जिसमें एक मैं भी हूँ। और वो बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। मुझे याद है कि बचपन में मुझे कमरे में बंद कर देते थे तानपुरा लेके और कहते थे 3 घंटे बाद मैं कमरा खोलूंगा और बाहर से मैं सुन रहा हूँ और सिर्फ सा गाना, रे तक नहीं पहुँचना
1: जी।
2: तो 3 घंटे मैं सिर्फ सा गा रहा हूँ। दूसरे दिन फिर बंद कर देते थे कि आज तो रे गाना है, रे गा रहे हैं। तो इस तरह हुआ ये कि वो जो स्वर हैं उन्होंने गले में एक सिंहासन बना के अपने को स्थापित कर लिया। तो वो सुर जो है वो अपनी जगह बैठ गया। इस तरह से उन्होंने खुद भी रियाज किया था और मुझे भी रियाज करवाया। साथ ही साथ मुझे कहते थे कि कम से कम आधा घंटा रोज रियाज जो है वो आईने के सामने करो कि तुमको ऐसा लगे कि कहीं तुम्हारा मुंह बन रहा है या हाथ पैर ज्यादा उठा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए, बहुत प्लेजेंट मुद्रा होनी चाहिए। तो उसका ही कारण है कि मुझे मुद्रा दोष का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं तो अक्सर गायन में मुद्रा दोष आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो उन्होंने सिखाई उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही हमेशा। और न जाने कितने उनके भजन हैं जो मैं गाता हूं और उनको और पॉपुलर करने की कोशिश करता हूं जो उन्होंने किए हैं। तो अधिकतर जो मेरा संगीत है वो मेरे पिताजी का ही है और मैं उसको पॉपुलर कर रहा हूं।
1: आपने कहा कि पहले दिन उन्होंने सा लगाने को कहा, दूसरे दिन रे, तो हमें बताइए कि 7 सुर कितने दिन में पूरे हुए थे और पहली बार उनके सामने आपने जब परफॉर्म किया तो क्या अनुभव था, कैसी यादें हैं?
2: नहीं, वो 7 सुर जब पूरे हो जाते थे फिर से 7 से शुरू करा देते थे।
1: अच्छा,
2: ये तो ये सिलसिला चलता रहता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हाँ अब सुर जो है इसके टिकने लगे हैं, ठीक होने लगा है, उसके बाद फिर कहते थे कि अब और भी कुछ गाओ साथ साथ। लेकिन शुरू में तो उन्होंने इसी तरह से तालीम दी
1: जी। अगर आपको याद हो तो बंदिश कौन सी सीखी थी पहली?
2: मुझे उन्होंने एक चतुरंग सिखाई थी
1: जी।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि उनके गायन की शैली क्या थी और किन राग रागिनियों का वो ज्यादातर प्रयोग करते थे।
1: पिताजी तो बहुत विद्वान थे, तो बहुत से रागों को गाते थे। उनका राग बिहाग में लट उलझी सुलझा जा बालम, इतना अच्छा सुंदर गाते थे। एक दिन मुझे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी बता रहे थे कि उन्होंने मेरे पिताजी को लट उलझी गाते हुए सुना किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, और उस दिन से उन्होंने, जसराज जी ने राग बिहाग गाना शुरू किया कि इतना सुंदर बिहाग कोई गा सकता है तो मैं भी गाऊंगा। उन्होंने भी गाना शुरू किया। तो पिताजी एक ऐसे गायक थे कि अपने गायन से लोगों को इंस्पायर कर देते थे और लोग गाने लगते थे। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत से रागों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो प्रचलित राग नहीं थे उनको भी प्रचलन में लाए।
0: और अब हम चाहते हैं कि पिता पुत्र के बीच एक रिश्ता होता है और गुरु शिष्य के बीच एक रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते के बारे में बताइए।
1: मुझे कई बार मेरा गाना सुन के कहते थे कि थोड़ा और रियाज करो, थोड़ी और मेहनत करो, ये जो नाम हो गया है उस चक्कर में मत फंस जाना। लेकिन मुझे भी थोड़ा ये रिग्रेट है, मुझे अफसोस है कि मैं उनसे कुछ 5 साल और सीखना चाहता था, लेकिन मेरा नाम ज़रा जल्दी हो गया। और एक बार नाम हो जाए फिर हम फंस जाते हैं अपने कार्यक्रमों में, सारी दुनिया घूमने में। तो एक ही रिग्रेट मेरे अंदर है कि मेरा नाम थोड़ा जल्दी हो गया, 5 साल बाद हो जाता तो मैं शायद और अच्छा गाता और सीख पाता।
0: सर, हम सब तो मंत्रमुग्ध होते हैं आपकी गायकी से और पिताजी पुरुषोत्तम दास जी की गायकी सुनकर। अब हम चाहते हैं कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की कोई भजन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: हाँ, एक उनका भजन बहुत ही सुंदर है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भजन बिंदु स्वामी का लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि पिताजी का गाया हुआ ये भजन पूरा सुनाया जाए।
0: जी।

0: हंसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत, फूल बने अंगारे। इस फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की है, रचना आनंद बख्शी की और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

भूले बिसरे गीत में ये पहला गीत अभी आपने सुना, फूल बने अंगारे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी की रचना थी, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अगला गीत सुनते हैं। नगमा फिल्म से ये गीत है, शमशाद बेगम की आवाज में नाशाद का संगीत पर किया गीत।

0: शमशाद बेगम की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म नगमा से। आइए अब सुनते हैं एक संदेश।
1: कहिए,
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन।

0: और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत आह फिल्म से। हसरत जयपुरी की रचना है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज लता मंगेशकर की।

ये गीत आपने सुना फिल्म आह से लता मंगेशकर का गाया गीत था, हस्टर जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, एक छोटे से अंतराल के बाद आपसे हम फिर मिलते हैं।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं हुस्न का चोर फिल्म से संध्या मुखर्जी का गाया गीत, राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत है, बुलो सी रानी का संगीत।

0: ओ जाने वाले, ये गीत अभी आप सुन रहे थे हुस्न का चोर फिल्म से संध्या मुखर्जी की आवाज में।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब आपको सुनवाते हैं 2 बीघा जमीन फिल्म से, शैलेंद्र का लिखा, सलील चौधरी के संगीत से सजा गीत, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की स्वरों में।

दो बीघा जमीन इस फिल्म से। अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की स्वरों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं टैक्सी ड्राइवर फिल्म से किशोर कुमार और साथियों का गाया गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे,
1: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: पीके दांत ली करूं तो मुझको जेल भेज दो, ढूंढने में क्या है ये जवाब थानेदार।

0: शरीर की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, स्टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म से ये गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की ये आखिरी प्रस्तुति शबाब फिल्म से। लता मंगेशकर का गाया गीत, शकील बदायूनी के बोल हैं और संगीत है नौशाद का।

लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे शबाब फिल्म से। शकील बदायूनी की रचना थी, संगीत था नौशाद का और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में लेकर हम हाजिर होंगे। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया और कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की में मैं आपका स्वागत करती हूं और आपको सुनवाती हूं ये पहला गीत, विश्वास फिल्म से मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में गुलशन बावरा की बोल कल्याण।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत गुरबानी फिल्म से। कंचन, मनहर उदास और आनंद की आवाजों में इंदीवर का संगीत है।

0: कुर्बानी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे, मनहर उदास कंचन और आनंद की आवाजों में।
1: मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो।
0: लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम हम ही प्यार के में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद हम ही राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मंजिल मंजिल फिल्म से गीत आशा भोसले शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

0: मंजन मंजिल फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आपने सुना।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

आइए आपको सुनवाते हैं नदीम श्रवण का की धुन से सजा गीत। गीतकार है समीर और अनुराधा पौडवाल मनहर उदास की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है सड़क।

अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाजों में ये गीत आपने सुना फिल्म सड़क से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लावा से अगला गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में लावा फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे और ये गीत बना कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की आखिरी पेशकश। इसी के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की यहीं संपन्न होता है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय

0: ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्र वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्य

0: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन

0: जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और चार ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ, आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, ये बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। यह हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ भरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो

0: अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
2: तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

ये है विविध भारती, भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करते हैं सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ, और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम चित्रलोक। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग श्रोताओं। पहला गीत सलाम नमस्ते, इस फिल्म से कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाजें हैं। जयदीप साहनी का लिखा गीत, संगीत विशाल शेखर का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की सलाम नमस्ते फिल्म के इस गीत के साथ। कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाजें थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं रेड 2 फिल्म से जुबीन नौटियाल का गाया गीत, मनोज मुंतशिर पूर्णम अलाहाबादी, नुसरत फतेह अली खान का लिखा गीत, रोचक कोहली नुसरत फतेह अली खान संगीतकार हैं।

दम लगा के हईशा इस फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये गीत। वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा।

0: दमलका के हईशा फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में आपने ये गीत सुना और अब सुनिए एक संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जावेद अख्तर का लिखा, शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजा, सोनू निगम अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना।

कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कभी अलविदा ना कहना फिल्म से। सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें हैं।

सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास का गाया गीत कभी अलविदा ना कहना फिल्म से अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलवाले फिल्म से अगला गीत, अमित मिश्रा, अनुष्का मंजंदा, अंतरा मित्रा का गाया गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और धुन बनाई है प्रीतम ने।

ये गीत था फिल्म दिलवाले से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज ने। नीलेश मिश्रा का लिखा गीत है, धुन इस बार फिर से प्रीतम की बनाई हुई, और फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं प्रीतम साहू और साथी। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं मुकुंद कौशल की रचना। आवाजें हैं प्रीतम साहू और दुर्गा ठाकुर की।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं प्रीतम साहू और साथ ही आइए अब सुनते हैं मुकुंद कौशल की रचना एक बार फिर, और युगल स्वर हैं प्रीतम साहू और दुर्गा ठाकुर की।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आइए एक बार फिर पुनः शिवरतन शांतर की रचना सुनते हैं प्रीतम साहू की आवाज में।

अभी आप छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे प्रीतम साहू और साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण सबरंग।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को संजय पाठक का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और इससे पहले चर्चा शुरू करें, लीजिए सुनिए एक संदेश।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: श्रोताओ कैसे हैं? क्या कहा? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। गर्मी के दिन है, स्कूलों की छुट्टियां हैं और ऐसे में हम अक्सर किसी पर्यटन स्थल घूमने चले जाते हैं या फिर बच्चे ननिहाल या ददिहाल चले जाते हैं। बचपन बहुत सुहाना होता है, इसमें किस्से और कहानियों का अपना एक अलग ही महत्व है। बचपन में दादी या नानी से कहानियां सुनते थे, ये कहानियां सिर्फ हमारी कल्पनाशीलता को ही नहीं बढ़ाती थी बल्कि हमें जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखा देती थी। कहानियाँ हमें जीना सिखाती हैं।

एक कहानी जो हम दोनों ने सुनी थी उसने इस दूरी को एक ही पल में खत्म कर दिया। अपने अनुभव की कहानी, अपनी आपबीती जब हम बताना सीख जाएंगे तो हम उस कहानी को बदल सकेंगे, एक नई कहानी लिखेंगे। कहानी की दुनिया में डूबकर हम खुद को एक बार फिर तरोताजा पाते हैं।

ऐसा ही है कहानी सुनने और सुनाने का जादू। कहानी कभी पुरानी नहीं होती, हरी अनंत, हरी कथा अनंता की तरह। हर उम्र में, हर परिस्थिति में वो कुछ नया सिखा जाती है। एक दिन अचानक एक बच्चा मिला। उस बच्चे और मेरे बीच कई दशक की दूरियां थी, पर

जो कहानी हम सुनते हैं या सुनाते हैं वो हमारा जीवन बन जाता है। अवसाद से पीड़ित लोगों की कथा अस्त व्यस्त रहती है। जब वो खुद को अपनी कहानी का नायक मानते हैं तो अंधेरे से उजाले की तरफ और निराशा से आशा की तरफ घूम जाते हैं। ये है कहानी की शक्ति। सही समय पर सही कहानी मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि शारीरिक उपचार की सुविधा तक प्रदान कर सकती है। यही कारण है कि सभी संस्कृतियों की प्राचीन परंपराओं में कहानियाँ मिलती हैं। कहानी ज्ञान और बुद्धि का विकास करती है। वो शिक्षा का पहला रूप होती है, जहाँ 3 से 5 साल के बच्चे कहानी सुनकर जिज्ञासु और कल्पनाशील बनते हैं। ये देखा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कहानी सुनना सुनाना लाभदायक होता है।

श्रोताओं, मनुष्य जहाँ भी जाता है अपनी कहानियों का खजाना लेकर जाता है। रात को जब सोता है तो सपनों के रूप में कहानी को पाता है। वो दिन में 24 घंटे कहानियों की दुनिया में रहता है। बस हम वो कहानियाँ सुनाएं जो हमें सशक्त और प्रबुद्ध बनाएं। कहानियों के केंद्र में विषय वस्तु के रूप में कोई न कोई संघर्ष जरूर होता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि डरना मत, लौटना मत, आगे बढ़ो। अंत में जीत मिलती है और परेशानी और दुख कुछ सिखाकर ही आगे जाती है।

कहानी सुनना और सुनाना हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। हम न सिर्फ एक अलग दुनिया की कल्पना कर पाते हैं, बल्कि हम दूसरे की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति को समझने की क्षमता भी पाते हैं। शोध से पता चलता है कि कहानी सुनने सुनाने से चिंता और अवसाद की समस्या से जूझने में मदद मिलती है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलती है। परिजन और शिक्षक कहानियों से बच्चों को आसानी से बहुत कुछ सिखा जाते हैं, क्योंकि इस दौरान बच्चा उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। बच्चे दूसरी बातों की तुलना में कहानियों पर जल्दी विश्वास करते हैं। कहानियाँ सुनाने में अभिभावक के साथ बच्चों का भावनात्मक रिश्ता गहरा होता जाता है, इसीलिए कहानी का अपना एक अलग महत्व है। और श्रोताओं, कहानी की इस बात के साथ ही अपने दोस्त संजय पाठक को दीजिए कार्यक्रम से अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण सब रंग। इसे आज आपकी सेवा में प्रस्तुत किया संजय पाठक ने। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर। और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2-3% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने बताया है कि मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वसहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। मंगलवार शाम दल्ली राजहरा में यह हादसा हुआ। मजदूर सीवरेज पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई। बताया जा रहा है कि BSP की सीवरेज पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत कार्य चल रहा था। इसी दौरान JCB और चेन माउंट मशीन की मदद से खुदाई की जा रही थी। अचानक मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और BSP के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया गया। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए kmy.gov.in पर

0: जा सकते हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इससे पहले 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया था। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्र रिले करेंगे। बलरामपुर जिले के धंधापुर गांव में खनिज विभाग की टीम ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल 4 वाहनों को जब्त किया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 14 मई को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करते हैं।
2: विविध भारती।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: क्रिकेट में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे।

0: हमारा खेत भी था, उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
0: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे। तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया। और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
0: हाँ, और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे,
1: जी,
0: बहुत शरारती रहे,
1: जी,
0: तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूम कर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाज़ारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान

0: आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
1: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना, और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: दिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी,
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
3: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
3: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
3: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
3: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
3: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
3: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
3: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
3: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
3: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
3: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
3: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
3: जी जी
1: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी

0: उनका नाम शांताबाई गोखले। उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
1: उन्होंने मेरी अनंत जोक कर रहे
0: जी,
1: हैं।
0: जी जी उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं। बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
1: उसी रोल के लिए
0: नहीं,
1: हाँ।
0: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दळवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर।
1: वाह, हाँ।
0: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए, लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हम। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज़ बज रही थी, आँखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरा प्रकर जी। तो वो 2 मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप, ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गाँव आया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। और लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूँ तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पर बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा।

0: शेट्टी,
1: अर्ध सत्यकारामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, ढाई तीन सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। दो ढाई दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ, मैं कुछ काम के लिए गांव गया, और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहाँ भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो, खुद उधर जाने की ज़रूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वहीं रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज़ के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: बाकी रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो कैसे मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज़ से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है, मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का युनक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी युनक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूँगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए।

0: और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले।
1: जी,
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले ज़रूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि आप,
0: प्रोत्साहित करना
1: हाँ,
0: था।
1: कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया,
0: जी
1: वो ही आपका इसमें
0: जी जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया। और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी। और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फ़ोटो निकालने की। तो वो मैंने फ़ोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार हैं, वो यादगारें हमें काम आती है,
1: जी
0: वो बहुत बढ़िया होती है।
1: जी
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है।
1: जी
0: वही तो हमारी, मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है।
1: जी
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देखना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूं, फोटोग्राफी करता हूं, दोस्तों से बातचीत करता हूँ। पुराने शिल्प मुझे बहुत
1: वाह,
0: पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो ज़रूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: वाह
0: हूं।
1: वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने।
2: जी
1: आपने कभी लिखा है, जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर वीवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है। मैं और डॉक्टर लागू, एक दो बार डॉक्टर लागू के संग मैं उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो, दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो। हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है।
1: जी
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे

0: लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की माया ही हो गई जैसे।
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी,
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको।

0: आप विभ्रांति की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा, और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11 बजे हैं, प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मधुरिमा। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं पंडित जसराज का गाया ये भक्ति पद।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई से 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित

0: 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आइए अब सुनते हैं शुजत खान की आवाज में हजरत अमीर खुसरो की ये रचना। संगीत सतीश शर्मा का है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुँचत है जन जन के द्वार।
2: आइए अब सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में उन्हीं की रचना, संगीत परेश नरेश की है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल

0: खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
1: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ
0: एडमिशन कराने,
1: खाता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कागज बनाए और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मधुरिमा FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2-3% दर्ज की गई है। ये आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत जीरामजी अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्व सहायता समूहों की महिला और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के क्रियान्वयन के लिए पत्र लिखा है। पत्र में सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण की स्थिति की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। विभाग ने इन कार्यों की निगरानी के लिए निकायों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के स्वच्छतम पोर्टल पर स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित प्रविष्टियों की भी जिला स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। कल शाम दल्ली राजहरा में यह हादसा हुआ। मजदूर सीवरेज पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई। बताया जा रहा है कि BSP की सीवरेज पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत कार्य चल रहा था। इसी दौरान JCB और चेन माउंट मशीन की मदद से खुदाई की जा रही थी। अचानक मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी केंद्र रिले करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। IPL मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अलावा होगी। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बीजापुर जिले में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से नागरिकों को आपात स्थिति में तत्काल पूरी सहायता उपलब्ध हो सकेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 12 बजे हैं, मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात

0: सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनकी ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: रामलखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को उनके जन्मदिन के मौके पर। सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनन उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनहर उदास के आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मनहर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम, और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में हैं। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जांबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, विविध भारती पर।

मनहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन रदास कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत, इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना। कंचन, मनोहर दास और आनंद की आवाज़ है। इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उनकी आवाज़ से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं। और अब सुनते हैं मनोहर दास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में सौदागर फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम के शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुंचा ही दी हैं, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आपके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी ही जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि गानों की जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है, हमारी जो लिस्ट है, हमने जो सोचकर वो इबारत लिखी है, वो सोच आपकी सोच से मिल जाए और वो गाने मैच कर जाए। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गाने ना मैच करें, फिर भी आप फेसबुक कमेंट्स के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाएं। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहाँ पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल, और कभी ऐसा ख्याल जो महका दे मन। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी गाती झूमती और रचती है सौ अफसाने, और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपी हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छांट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए ये आपके कमेंट्स देखकर हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट काफ़ी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन के जो गीत हैं वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही ढर्रे पर, सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का, हमसे बांटिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और हमें ये भी बताइए कि इसमें आवाज किसकी है।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुला।
1: मन्ना डे की आवाज़ में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो ज़रूर शामिल होगा। तो बिल्कुल सही बात तो है, क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है, ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं, और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुँचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली हैं उससे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि पिछले जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफ़ी सुविधा हो जाती है, ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारे कौर साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही चीज़ों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं हमें जीवन में भी। तो आप किस तरह का पहलू देखते हैं अपने जीवन में, और हमने पूछा था कि जीवन में अगर कोई मुश्किलें आ जाए तो आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं, क्या आप उस मुश्किल को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं, या गाते झूमते नाचते अपने उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए। हमें बताइए, और तब तक

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहाँ, जवाब महका, गाता झूमती, सपना रचना, जाने कहानी, सहारा बेसहारा, जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनके जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ शब्द हैं जिंदगी पहेली कोई समझ, सवाल जवाब ख्याल जीना सहारा, अनजानी बहती झूमती गाती जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं, और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रही हैं क्योंकि बहुत सी कॉमन गाने बचते हैं जो लगभग सब ने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है, तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं करी। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हों, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता भाई। इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो ज़रा अच्छी बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है जिंदगी पहेली सवाल जवाब मुश्किल ख्याल महका मन नदी धारा उलझन गाती झूमती रच

या रचती अफसाने हकीकत सपना कहानी अनजानी जानी पहचानी सहारा बेसहारा जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उठा लिए हैं, तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है, तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए।
0: क्यों बच्चों, ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: क्या कहा?

0: देखो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुगली। करेक्ट?
1: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: अच्छा, ये भी गलत।
2: जी हाँ।

0: ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफ़ी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आपको लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा।

था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहती हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन से में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म, बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदन लाल सहगल की आवाज़ या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बन कर आपसे पूछते नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई, तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे एक साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे कि मेरे सारे स्वप्ने दीवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अथवा चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले। शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। ये इन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती, अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफ़ी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुनें तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहाँ उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही हैं अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है, और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में। तो हम उन्हें बता दें, जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोअर 100K लिखे हैं, यानी 1,00,000 फॉलोअर हैं, 1,00,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती हैं वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती हैं। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर। नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियाँ चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला। एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है, अभी 2 दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती है कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, CID फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाजें हैं इस गीत में।

0: बे मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने के सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठें और बस बाहर आएं। बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहां, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला, जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे एक और साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम, बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी, तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफ़ी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफ़ी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खास तौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। भाई ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज़्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रही है और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, ये बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। यह हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: घुल गए चोर बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ भरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में NDA की सरकार बनी।

0: है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक

0: में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने

0: और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्ति निवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान का।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

कानून हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
2: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं इस सखी सहेली मंच पर। और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा।
1: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
2: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
2: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था।
1: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है। अच्छा। कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
2: तो एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूं ना।
1: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय बता
2: दें। बता देते देखो व्यंजन की बात आज करने वाले हैं तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोले दाबेली बाद में खिला दूंगी।
1: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में। यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
2: और
1: है।
2: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
1: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
2: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
1: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
2: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है ना?
1: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से इतने सुंदर से
2: आप मेंटेन है ना ये
1: तो
2: बात
1: वही तो बात है,
2: इसलिए हमें संतुलन रखना है ना,
1: पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है। वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
2: बिल्कुल आनंद,
1: संतुलन जरूरी है,
2: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं
1: जी। तो सुनते हैं गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो 4 अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मी नेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़े

0: आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
1: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
0: और
1: और
0: पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी वो,
1: कितनी
0: है ना।
1: पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है। और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफ़ेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
1: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई डिज़ाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफ़ेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
0: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है
1: और
0: ना।
1: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
0: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है, और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है। यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
1: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियाँ और पश्मीना सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध हैं। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौक़ों पर पहना जा सकता है।
0: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिज़ाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं, और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काता जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना

0: लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफ़ी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, 1-2 महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिज़ाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ।
1: हाँ
0: साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है! और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्ड्रोब में। बिल्कुल, आपकी वार्ड्रोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना?
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि
0: जी
1: हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: मिलता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत महत्वपूर्ण।
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीज़ों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ हमारे पास होगी या नहीं होगी। हम सब चीज़ें खरीद लाते हैं। हमारा यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा। सब सादगीपूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते थे।
1: काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, सब लोग, घर में चक्की भी चलना है तो
1: हाँ,
0: गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से
0: धूप,
1: पानी निकालना है,
0: हाँ
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते थे।
0: काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में तो
0: आहार में,
1: इतनी, आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
1: रह
0: जीवन
1: सकते
0: गुजार
1: हैं।
0: सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ, जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी ये काम की, मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रसस्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक
0: जी
1: हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले,
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई तुम थिरक
1: मंजरी
0: रही थी इस गाने पर, है ना।
1: जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी
0: हाँ
1: पायल थिरकने लगती है, हमारी
0: भाई
1: पायल
0: मैं
1: बजने
0: देख रही
1: लगती
0: थी। तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है
1: बहुत सारे हमारे
0: हमारे, अच्छा
1: साथियों
0: एक
1: ने।
0: साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए,
1: और
0: है
1: अब
0: ना।
1: लेते हैं एक
0: अंतराल
1: ब्रेक।

0: तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता

0: के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है।
0: है, बहुत सुंदर
1: और
0: बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के एक खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी, और अंकल चिप्स थे उसके, चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी,
0: नहीं,
1: ऐसा
0: देखिए
1: लग रहा था।
0: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि
1: क्या बात
0: ऐसा
1: है।
0: नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते
1: ले
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए। सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा
1: बिल्कुल।
0: होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं। वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम अमरूद खाते थे,
1: हाँ,
0: बेर
1: सारे
0: खाते
1: फल।
0: थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद
1: अरे,
0: होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे
0: खाया
1: मतलब
0: जाता है।
1: खाया जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है।
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया
1: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए
0: जी।
1: थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है, तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें ले लिखी है। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है, वैसे मैंने
0: पढ़ने में
1: आपका
0: दिक्कत
1: पढ़
0: नहीं
1: लिया।
0: आती है ना।
1: हाँ, वो इजिली सी आंखों में अटैक कर जाता है,
0: जी।
1: हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है, ऐसी कोई
0: एक हमारे
1: दिक्कत नहीं।
0: साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी

जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना, जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना? और क्या करें, सुने गीत, सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार, शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं, वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है
1: ये पढ़
0: क्या? अच्छा,
1: दिया
0: तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते, कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है।

0: श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये
0: लेकिन
1: टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है ना,
0: इसमें मजा आता है जिसको लगा रहे मैंने दोबारा पढ़
1: पर अगर
0: लिया।
1: हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि
0: हाँ
1: हाँ हमने गलती कर ली,
0: हाँ तो
1: तो
0: कोई
1: वो
0: भी दिक्कत
1: आत्मविश्वास
0: नहीं,
1: भी अच्छा लगता है
0: बिल्कुल
1: ना। आज ये
0: बिल्कुल।
1: शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में,
0: हाँ
1: हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी आत्मविश्वास जो ऐसी ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर
0: बिल्कुल
1: वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए। मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी
1: एक
0: आपने।
1: हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब
0: क्या
1: एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास से ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है।
0: बहुत सुंदर
1: और
0: विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर, जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: तो
0: बता
1: हमारे
0: दीजिए।
1: साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भून कर पीस कर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है। जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें। एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में 1 बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं तो
1: बहुत अच्छा
0: बच्चे बड़े
1: लगता
0: खुश हो
1: है।
0: जाते हैं ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है, बस
1: बिल्कुल
0: तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना
1: बिल्कुल
0: बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी
1: बिल्कुल
0: सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी गिरगांव जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे
1: क्या
0: एक मैं
1: बात।
0: पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के
1: क्या
0: बारीक बारीक
1: बात है।
0: छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए
1: क्या बात
0: और ये
1: है।
0: पौष्टिक भेल सर्व कीजिए,
1: हाँ,
0: यानी
1: बहुत
0: हमें
1: खास बात है आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े
0: हाँ यानी
1: और
0: आलू के
1: रागी।
0: बदले हम
1: हाँ, शकरकंद
0: शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं,
1: अच्छी सुंदर
0: और
1: बताई,
0: बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की
1: रागी की
0: सेव
1: से।
0: यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे, तो

0: ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते हैं, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि
0: गीत
1: कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला।
0: दाबेली, कच्ची दाबेली या डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है, और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो हमारे
0: खाने की चीजों से, भले
1: साथ
0: ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये
1: लेकिन
0: नहीं खाना है वो नहीं खाना
1: अरे
0: है।
1: आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, तो हम उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं
0: और फिर
1: व्हाट्सएप
0: क्या
1: पे।
0: होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है, अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी
1: हाँ
0: थी उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये सब डालना है, और लेकर आते
1: एक्स्ट्रा
0: हैं
1: शॉपिंग कर लाते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं
0: और
1: चीज
0: कभी
1: बटर
0: कभी बनाते भी नहीं है, वो
1: से
0: पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो
1: रखे
0: जाता
1: रहते।
0: है।
1: देखो हमारे साथी लिख कर बैठते हैं रेसिपी सुनकर नाना करते दाबेली बनाकर खा भी बैठे हैं, और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने

0: लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है
1: सचमुच
0: हमारे
1: इंदौर
0: देश
1: बार
0: में
1: बार जाने को जी
0: जी।
1: करता है।
0: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया, उन सभी शहरों में जाइए और वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
1: और खूब
0: है ना।
1: खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि
0: बिल्कुल।
1: है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम
0: फिलहाल
1: स्वस्थ रहेंगे।
0: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
1: और
0: है
1: है ना
0: ना।
1: सभी को सोनाली पाठक
0: और मंत्री वर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबना

0: कहीं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था। और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे, उनकी आवाज़ सुना, आम अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था।
0: जी,
1: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये, कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबार का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या
0: जी।
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
0: जी,
1: और न सिर्फ आऊंगा
0: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
0: वाह वाह वाह,
1: उसी चैनल

0: से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस एक से एक टेबल, मैं क्या नाम लूँ, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर का।
1: बात है, क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े
0: है?
1: दिग्गज
0: बड़े
1: लोग वहां
0: दिग्गज
1: से आते
0: लोग,
1: हैं
0: नंदलाल शर्मा जी,
1: जी,
0: फिर ओम शिवपुरी, ये सब भी लोग वहां पे काम
1: गंगा
0: कर।
1: प्रसाद जी।
0: हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी जी
0: और
1: जी
0: कर रहे थे, है ना? तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि
1: जी।
0: मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो
1: वाह,
0: सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट, और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला, हम लोग
1: यहां
0: बड़े।
1: एक पल के लिए रुकना
0: जी
1: चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो
0: जी
1: जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है, इसके
0: हाँ,
1: बारे में
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: सही है,
1: बताएं
0: वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं,
1: जी।
0: तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर, और मेरी पिताजी जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे
1: जी
0: नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का सेतु।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस
0: क्लियर?
1: बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक
0: बिल्कुल
1: बुनियाद का
0: बिल्कुल
1: शहर रहा
0: जी
1: है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और
0: जी
1: संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: हाँ, ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसडी जा चुके थे। हाँ,
1: ओके
0: और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था।
1: जी
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का
1: वाह,
0: तुगलक,
1: क्या बात है
0: जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक
1: जी।
0: प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ, तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायु।

0: ये
1: जी
0: सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे, तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें
0: हाँ
1: चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको
0: नहीं, बहुत अच्छा
1: कि
0: लगता है, बहुत
1: परंपराएं
0: अच्छा
1: आगे
0: लगता है।
1: हैं?
0: मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे।
1: जी, और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो
0: ओ
1: हाय रे वो
0: बढ़िया,
1: दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा
0: बहुत
1: फिल्म का
0: अच्छा है,
1: गाना
0: बहुत
1: है
0: अच्छा है,
1: ना, ये
0: वाह,
1: गाना
0: मेरा
1: सुनते हैं।
0: पसंदीदा गाना है।
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे,
0: जी
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ?
0: बिल्कुल,
1: हाँ, तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था,
0: जी शाही,
1: जंजर शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे फिल्म, तो बाद में थिएटर पहले देखते थे।
0: हाँ वो
1: हाँ
0: टूरिस्ट मैप पर था
1: हाँ
0: वो।
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका,
0: जी
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त तो फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी
0: जी
1: बात होती
0: बिल्कुल,
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी
0: जी
1: होता था। और
0: ये

0: तो हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह वाह,
1: और कई फिल्में थी और लंबी लंबी लाइनें और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गाने कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
1: ये गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता
0: खुद गाते था।
1: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसको धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वो एक अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
0: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका।
1: हाँ, मेरे ख्याल गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
0: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी।
1: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी,
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरी नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
0: वाह वाह,
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
0: क्या बात है।
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा जिसके हमने शोज किए भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला, और एक नाटक मराठी क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ,
1: उसमें गुजराती मराठी सिंधी पंजाबी सिख मुस्लिम सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब
0: बिल्कुल।
1: आज इस घर में घुस गए कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो ईद हो और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं।
0: वाह वाह,
1: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
0: गजब।
1: तो एक नाटक था श्याम फड़के का कॉमेडी काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
0: हाँ हाँ,
1: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
0: क्या बात है,
1: इस नाम से किया, और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
0: वाह,
1: रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
0: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
1: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
0: अच्छा,
1: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से
0: जा चुके थे उस दौर में जब आप
1: तो वो तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
0: जी,
1: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
0: बिल्कुल।
1: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा,
0: जी जी बिल्कुल,
1: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
0: हाँ,
1: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो सार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
0: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
1: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और इसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुना होगा,
0: बिल्कुल,
1: गणपत लाल डांगी,
0: हाँ,
1: जिनका हवा महल में
0: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेस लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये
0: जी। और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी,
1: हाँ, क्योंकि अजमेर

0: इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था,
1: जी
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको, और आज भी
1: अच्छा
0: शायद वही होगा कि
1: जी
0: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था,
1: जी
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर अखबार,
0: हिंदुस्तान का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
1: जी
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा या, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे, और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया, और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया, और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया, और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है,
1: क्या बात है।
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया, फिर
1: तो वहां
0: जयपुर।
1: तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फकीर,
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से
1: ऐतिहासिक स्टेशन है
0: वो,
1: जलंधर,
0: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल,
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन
1: यस
0: सिंह मीशा,
1: जी
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
1: बिल्कुल,
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट, और बहुत एक्टिव शहर था,
1: जी
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का
1: हाँ
0: प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं
1: दिक्कत
0: थी,
1: नहीं
0: मतलब,
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर
0: एक
1: में
0: साल
1: रहे
0: एक साल
1: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
1: जी
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे,
1: जी
0: जो सुरजीत पातर, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब कुछ में
1: बिल्कुल।
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था,
1: जी
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे, सब कुछ, और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ, तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
1: बिल्कुल
0: पूरे उनके
1: बिल्कुल,
0: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तक लोग सुनते थे और सबसे लास्ट में उन्हें
0: हाँ
1: पढ़वाया
0: तो
1: जाता
0: जी,
1: था
0: और मेरा वो शुरुआती दौर था,
1: जी।
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी,
1: अरे
0: तो ये
1: गजब,
0: एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या
0: मिला
1: बात है,
0: जो।
1: क्या वो
0: हाँ
1: गीत याद है आपको?
0: जो वो मेरे काफी पढ़ा इधर उधर,
1: जी
0: तरन्नुम में सुनाऊँ उसको
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल
0: जी।
1: स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: मुश्किलों का मेला है। और ये नवगीत का शुरू हुआ था तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं
0: से,
1: से क्या बात है।
0: बात

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: थैंक यू,
0: जाहिर है कि
1: धन्यवाद।
0: इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार रहा
1: वो
0: होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का
0: जी
1: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
0: हाँ,
1: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
0: मिनिमम।
1: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
0: हाँ
1: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था, तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
0: जी,
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
0: तो
1: या
0: आपके
1: था।
0: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा
1: हाँ
0: है कि नहीं, क्या
1: हाँ
0: चल रहा है मन
1: तो
0: में।
1: बस वो उनको सूचना जरूर, वो और हमारे संवाद माँ से होता था,
0: जी
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ जो पिताजी से घर पे जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
0: जी जी
1: होते थे,
0: जी
1: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
0: वो
1: बताते
0: दौर भी
1: नहीं
0: ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ
1: थे।
0: करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी,
1: नहीं
0: देकर
1: बिल्कुल, ये
0: गई।
1: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
0: जी
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं, तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
0: बाप रे,
1: कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
0: आमने
1: सुना
0: सामने
1: है,
0: देखा। जी
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे,
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है, और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में, जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो,
0: जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक
0: ये तो एक नया खुलासा है हमारे
1: था।
0: लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
0: हाँ,
1: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
0: तंग
1: आते
0: कर
1: जाते
0: लेना।
1: को तंग करना या मस्ती करना,
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती
1: शिकायत माँ के पास आती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे,
0: हाँ
1: मैं
0: जी
1: नंबर दो था, तो
0: जी
1: पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घरेलू
0: बिल्कुल
1: नाम,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू,
0: जी,
1: खैर, तो वो छोटू की शिकायत जो
0: रोज आ रही
1: है
0: है।
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
0: प्रोटेक्शन,
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
0: हाँ।
1: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो, तो वो मैं बोल नहीं सकता।
0: उसका जिक्र ना ही करें तो
1: तो ये एक
0: अच्छा।
1: अच्छा बचपन बीता,
0: जी
1: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
0: अरे
1: मतलब घर में
0: गजब।
1: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो, हम
0: हाँ, वो अपनी दुनिया
1: वो
0: उनकी।
1: अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब
0: हाँ।
1: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो

0: परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी
1: बिल्कुल
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है। इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं,
0: हाँ,
1: एक था बचपन,
0: एकता बचपन
1: क्योंकि
0: जरूर
1: ये
0: होगा,
1: जो
0: बिल्कुल
1: बचपन के
0: बिल्कुल
1: जो दिन हैं उनके
0: बिल्कुल
1: उनके
0: बिल्कुल
1: नाम ये गाना है।
0: बिल्कुल जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे, और कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा।
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाएगी,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी IAS ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तुम्हें देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं
0: है?
1: सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ
0: गजब,
1: बैठता
0: गजब,
1: था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही उनसे।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, उसने मंची ये नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था
0: जी।
1: मेरे, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो MA किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना बोलता। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं भी,
1: पत्रिकाएं भी,
0: सारिका,
1: दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी। तो ये मैं इन सबको चार्ट चार्ट जाया करता था वहां जाकर के,
0: वाह वाह,
1: घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, आके चले गए, आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे 2-3 घंटे निकल जाते थे।

0: तो
1: जी
0: बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में दो पंक्तियों में जो
1: सारी
0: वो
1: बात कह
0: था सारी
1: देना।
0: बात कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया।

0: लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे वो, और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: बोले ये, और यो जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है
1: जी
0: और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना
0: हाँ,
1: नहीं है,
0: तो खुद
1: और
0: मैंने भी,
1: मुश्किल भी
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मुश्किल भी
0: हाँ
1: है इसको
0: मुश्किल भी है,
1: निभाना।
0: तो उसको निभा ले जाना। और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें
1: जरूर सर, अरे स्वागत है,
0: तो
1: बिल्कुल
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन
0: हाँ,
1: अलग है
0: मैं जो मैं
1: जी,
0: सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत है।
0: यहाँ हर शख्स हर

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शाख। और ये खास शेर है वो।
1: स्वागत है।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूं।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला,
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है, बस
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहे,
1: जी
0: अब नहीं, बहुत हो
1: जी
0: गया, है
1: जी
0: ना, ये
1: जी
0: आता है। फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये, तो
1: की
0: फिर
1: कहानी।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहते हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम
0: थैंक
1: बहुत खुशनसीब
0: यू।
1: हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप मौजूद हैं
0: मेरे
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में 1 साल बिताने के बाद आप कहाँ गए
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
1: जी।

0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये, कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: मतलब जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा
1: हाँ,
0: शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा
1: अच्छा खान पान था।
0: खान पान था, अच्छा मौसम था,
1: जी
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होमसिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापस, है
1: जी
0: ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और मैं वो सुन ली गई, मान ली गई, और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह
0: तो मैं
1: वाह।
0: वहां फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा
1: तो ये
0: उसके।
1: बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी
0: बिल्कुल
1: होती
0: सही
1: है और
0: बात।
1: अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूं है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: तो वहीं
1: बिल्कुल।
0: मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पे एंटर हो रहा हूं
1: जी
0: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है।
1: जी
0: तो और क्या टीम थी वो वहां पे,
1: बिल्कुल।
0: क्रीम, बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ,
1: जी जी जी
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल।
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे तो
0: पला
1: आप
0: बड़ा
1: सब
0: था।
1: जानते
0: और
1: थे।
0: फिर
1: और
0: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले,
1: जी
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था, सब कुछ। नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ, म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ। अभी तो नहीं हो रहा, उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के एक दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने प्रोग्राम
1: कॉन्सर्ट्स होते
0: करे,
1: थे।
0: कॉन्सर्ट होते थे,
1: जी
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह, क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
1: जी जी
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया
1: वाह,
0: और उसको प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह,
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब।
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, यूनुस, उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका
1: बिल्कुल
0: कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का।
1: जी।
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, और मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए लोगों ने
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में।
1: अरे
0: तो
1: बाप रे।
0: गाने संस्कृत में हैं
1: जी
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुकी इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है
1: हाँ,
0: ये
1: तो बहुत
0: हम
1: मुश्किल काम है।
0: बहुत मुश्किल। तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ, और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और
1: जी
0: समझे भी, मतलब
1: वाह
0: गीत
1: वाह।
0: गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में,
1: जी जी
0: तो वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे। लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है,
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि
0: तो वो गाने के
1: संस्कृत
0: तौर
1: से।
0: पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह। तो ये पूरा
0: इसी
1: जयपुर
0: तरह
1: का
0: से
1: दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने उसको रेडियो अडॉप्टेशन किया,
1: वाह,
0: उसको वो किया, तो ये दो बड़ी वो थे कहना
1: क्या
0: चाहिए।
1: शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका, नाट्य
0: हाँ,
1: समूह।
0: नहीं विकल्प, ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो

0: सक्रियता नहीं रही।
1: जी, क्योंकि
0: हाँ
1: रेडियो में आप पूरी
0: हाँ
1: तरह से अपने
0: हाँ
1: आपने अपने आप को झोंक दिया था।
0: हाँ मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया।
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का,
1: जी,
0: जो गोगोल का
1: इंस्पेक्टर जनरल का।
0: उन्होंने नौटंकी शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया,
1: वाह,
0: डायरेक्शन भी किया और वो भी किया
1: तो
0: जनरल।
1: संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार,
0: हाँ इसमें करनी ही वाला बात नहीं था, मतलब अंदर से
1: जरूरत।
0: होता था,
1: जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि
1: बिल्कुल
0: हाँ कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि
1: ये
0: ये
1: मैं करता
0: हाँ
1: हूं।
0: इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है कि
1: बिल्कुल,
0: आप तो उसी तरह से वो चाहे वो गीत गोविंद हो। जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी
0: जो स्टाफ में थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती
1: बिल्कुल
0: है
1: होती
0: ना,
1: है।
0: जानते
1: जी
0: हो। और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है,
1: जी
0: उस वक्त
1: जी
0: 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी,
1: जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी।
1: कि नहीं, आप करो।
0: हाँ मतलब वरना ये होता नहीं है ये
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि और 4
1: बिल्कुल,
0: कंपोजर हैं स्टाफ में मौजूद हैं
1: तो आप
0: और
1: उनको।
0: उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं,
1: जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो मैं एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए सब कुछ हुआ।
1: हाँ
0: एक बार मैं बताऊं कि जो महादेवी वर्मा का गीत
1: हाँ
0: मैं नीर भरी दुख की बदली
1: हाँ
0: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना,
1: जी
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था,
1: जी
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता किसी के
1: हाँ
0: लेके उसको कोई पढ़ता था और गीत होता था कोई गाता था,
1: वाह
0: तो उस
1: वाह
0: तरह का एक
1: वाह,
0: प्रोग्राम तो वो मैं करता था। तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया,
1: वाह
0: इनको
1: वाह,
0: स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे ये
1: ये
0: हो
1: चीजें
0: गया।
1: चलती रहीं लगातार, ये बहुत अद्भुत बात है। ये एक अलग पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार।

सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक।

प्यार झरना है और इस निर्झर में बह जाता है हमारा मन। नहीं रोक पाते हम प्रेम के निर्झर को, वो बहता जाता है जहां तक धरती है वहां तक है प्यार का आलम।

कतरा कतरा भीगता है मन, बूंद बूंद बरसती हैं यादें, हर्फ हर्फ झड़ते हैं ख्वाबों के नूर, मीलों भटकता है मन बेसबब, खोई खोई आंखें, बहका बहका ख्याल, और सदी तक मोहब्बत पर कायम रहने वाले लोग।

तेज रफ्तार जिंदगी पर एक रोज विराम लग गया। घिराई घटाएं, काले मेघ डर का साया बन गए। हरे नरम दूब सूखे पत्तों में तब्दील हो गए। किताब का एक ही पन्ना अलग अलग लाइनों में बदल गया। नाजुक नर्म अल्फाज ने आंखों में सैलाब भर दिया।

आज मन की नोटबुक में लिखे हैं कुछ गुलाबी शब्द, कुछ सुर सब तक आरो आरो और गुनगुनाया है प्रेम गीत। लिखा है खामोश अफसाना, पर शोर के इस दौर में कौन सुनता है खामोशी की सदा।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। न रहा अब अपने पास वो दिल का खजाना जिससे रोशन होते थे अपने ख्वाब, जब पूरी कायनात अपनी सी लगती थी, जब हर सुबह हरे रंग के कोपल खिलते थे, खिले हुए गुलाब को देखकर मुस्कुराकर बतकही चढ़ती थी। सब कुछ तो है पर नहीं है बहुत कुछ जिसकी है चाहत।

मोहब्बत एक कहानी है, एक राग है मोहब्बत, एक छंद है, एक कविता है मोहब्बत। मोहब्बत इबादत है, जो लिखता है मोहब्बत अपनी जिंदगी में वो नफरत के चिंगारे से दूर हो जाता है। जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है वो सिर्फ खुशियों के रंग में डूब जाता है। जिसे मिलती है किसी की बेपनाह मोहब्बत वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है।

0: तराने नए पुराने
1: साथियों, प्रोग्राम तराने नए पुराने में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह है आज के इस प्रोग्राम का पहला नगमा।

हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। सड़क फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में। समीर के लिखे बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

शाम ढले शफक रंगों के बीच एक खूबसूरत नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। मुकेश की आवाज में गीत आपने सुना आनंद फिल्म से, योगेश के लिखे बोल और सलील चौधरी का संगीत।

0: परम सुंदरी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम तराने नए पुराने के शेष गीत आप सुनेंगे समाचारों के बाद। राष्ट्रीय सेवा कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार।
1: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए हिंदी समाचार।
2: मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
3: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद

बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ह अपन काफिला मा करिन कटौती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ह 14 ठिन खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत मा बढ़वार ला दे हे मंजूरी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ह आज कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजा करिस घोषित। अब समाचार विस्तार ले। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकार मन है ईंधन बचत उपाय तेज कर दे है। वैश्विक ईंधन कीमत में बढ़वार के सेती प्रधानमंत्री है हाले में घरेलू दौरा पर अपन काफिला के आकार छोटा कर दे हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के जरूरी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रही। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घलो अपन काफिला के आकार घटा के आधा ले कमती कर दे एति। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका हा अपन आधिकारिक काफिला मा चलैया गाड़ी के संख्या कमती करीन है। श्री डेका हा आम लोगन ले मितव्ययता बरते के आह्वान करीन है। राज्यपाल हा किहिन की सामूहिक जिम्मेवारी और संसाधन के संतुलित उपयोग ले ही हमर देश भविष्य के चुनौती के प्रभावी ढंग ले सामना कर सकी। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो प्रदेशवासी मन ले ईंधन और संसाधन के कमती उपयोग करे के अपील करीन है। उमन किहिन की सबो सरकारी गाड़ी ला चरणबद्ध तरीका ले इलेक्ट्रिक गाड़ी मा बदले के काम शुरू करे जाही। मुख्यमंत्री है बताइन कि उमन अपन काफिला मा गाड़ी के संख्या मा कटौती करे के फैसला ली ही। केंद्रीय मंत्रिमंडल है विपणन सीजन 2026-27 बर 14 ठिन खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत में बढ़वार ला मंजूरी दे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठका के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हा किहिन की सरकार हा किसान मन ला उखर उत्पाद के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करे बर खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दे हैं। उमन किहिन की खरीफ सीजन बर किसान मन ला अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपया के भुगतान करे जाही। उमन यहू किहिन की ये सीजन मा 824 लाख मीट्रिक टन ज्यादा के फसल बिसाए जाही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है आज कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजा घोषित कर दे है। एसओ CBSE के कक्षा 12वीं के विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषय परीक्षा 17 फरवरी ले 10 अप्रैल तक राखे गे रही। CBSE है बताए है कि 17,68,000 ले ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में संग्रीन, जेमा 15,07,000 ले ज्यादा विद्यार्थी पास हुए हैं। एसओ के कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्र अपन परिणाम CBSE के आधिकारिक वेबसाइट और उमंग ऐप में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय CBSE 12वीं बोर्ड के परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थी मन ला बधाई और शुभकामना दिन है। केंद्र सरकार है सोना और आने कीमती धातु में आयात शुल्क बढ़ा दे है, जो उन आज ले प्रभावी हो गए है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय है कहे है कि सोना और चांदी में 5% और प्लेटिनम में 5.4% आयात शुल्क लगी। एक पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पश्चिम एशिया में चलत संकट ला देखा लोगन ले सोना बिसाले बांचे के अपील करे रही।

रायपुर के प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के बैठका राखेगी। बैठका में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत कतकुन बड़का अधिकारी मौजूद रहीन। बैठका में नक्सल उन्मूलन में प्रस्ताव पारित करेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कोती ले आवास और पर्यावरण विभाग के सहायक संचालक योजना के 21 पद में भर्ती पर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिए गए है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी यकीन कि ये भर्ती सिर्फ खाली पद के पूर्ति नो है, भलुक छत्तीसगढ़ के सुव्यवस्थित वैज्ञानिक और दूरदर्शी शहरी विकास के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हरे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। बालोद जिला में मिट्टी धसे ले 3 झीन मजदूर के दबके मौत हो गए, जिमा एक महिला घरों शामिल है। ये हादसा काली संझा दल्ली राजहरा नगर में वो बेरा हुई जब मजदूर बीएसपी के सीवरेज पाइप बिछाए बर खुदाई करत रही ने। यही दौरान औचक माटी के धसे ले वहां काम करत मजदूर मलबा में दबके उखर मौत हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगन मन आरोप लगाए हैं कि काम के दौरान सुरक्षा के बने व्यवस्था नहीं करेगी रही। प्रशासन ने मामला के जाँच शुरू कर दे और दोषी मन के खिलाफ उचित कार्रवाई करे के भरोसा देवाइन है। दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक परिवार के 4 जन के मौत के मामला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मृतक के परिजन मल्ला 5-5 लाख रुपया के सहायता राशि दे के घोषणा करी है। ये रकम शासन के नियम के तहत मिलैया 4-4 लाख रुपया के सहायता रकम ले अलग हो ही। घटना की जानकारी मिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौका में पहुंच के वहां के स्थिति ला देखी। लोक शिक्षण संचालनालय है महासमुंद जिला के भंवरपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष समेत 5 जिन कर्मचारी मल्ला निलंबित कर दे हैं। ये सब ऊपर परीक्षा संचालन में कोताही बरते के आरोप है। खबर के मुताबिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के दौरान सुरक्षा और जाँच नियम के उल्लंघन पाएगी, जेखर सेती एक छात्र डिजिटल कैमरा लेके परीक्षा कक्ष के भीतरी प्रवेश करे में सफल रही। छात्र परीक्षा कक्ष के भीतरी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में प्रसारित कर दीस। निलंबन के बिरा ये सबो के मुख्यालय महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रही। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर पद के प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई के होए के घोषणा करे है। ये परीक्षा इतवार के बिहनिया 10 बजे ले मंझनिया 12 बजे तक राज्य के सबो 33 जिला में हो ही। ये पद पर 1,37,000 ले ज्यादा अर्जी मिले रही। दस्तावेज और शारीरिक माप परीक्षण के बाद 63,342 उम्मीदवार परीक्षा पर पात्र पाए गए हैं। प्रवेश पत्र परीक्षा ले 15 दिन पहली आयोग के वेबसाइट में जारी करे जाही। बीजापुर जिला में सुरक्षा बल मन माओवादी मन कोती ले लुका के राखे करीबन 65,65 लाख रुपया नकदी समेत बड़ मात्रा में हथियार गोला बारूद विस्फोटक जिनिस बरामद करे हैं। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव हो बतायन कि अभी तक जिला में 7 करोड़ रुपया ले ज्यादा के नगद रकम के संगे संग 8 किलो 200 ग्राम सोना घलो बरामद करे जा चुके है। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेली जाही। ये मैच संध्या 7:30 बजे ले शुरू हो ही। एकर पहले 10 मई के नवा रायपुर में खेले गए एक आने मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियन ला हराए रही। आकाशवाणी रायपुर कोतिले आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में विशेष कार्यक्रम प्रसारित करे जाही। प्रादेशिक समाचार एकांश कोतिले तैयार ये कार्यक्रम के प्रसारण आज रतिया 8:15 ले हो ही। इला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र रिले कर ही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर नामांकन के काम चलत है। ये पुरस्कार खातिर 5 से 18 बच्चर आयु वर्ग के लयिका 31 जुलाई तक अर्जी दे सकत हैं। महिला और बाल विकास विभाग ले मिले जानकारी के मुताबिक अर्जी सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ले ऑनलाइन मंजूर करे जाही। राज्य शासन ने प्रदेश के प्रतिभाशाली लयिका मन ले ज्यादा संख्या में अर्जी करे के अपील करी ने। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर बच्चर राष्ट्रपति कोती ले वो लयिका मन ला दे जा

0: साथे जौनमान आने आने क्षेत्र में बने प्रदर्शन करके देश के गौरव बढ़ाए हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार है बताएं कि NCERT और CBSE है मिलके तीसरी ले आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थी मन पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आधारित एक ठी नवा पाठ्यक्रम शुरू करे है। उमन बताएं कि शिक्षक मन ला गर्मी की छुट्टी के दौरान प्रशिक्षण दे जाही और छुट्टी सिराए के बाद स्कूल खुले माँ ये विषय के पढ़ाई शुरू हो जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री है अपन काफिला में करीन कटौती। केंद्रीय मंत्रिमंडल है 14 टीन खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत में बढ़वार ला दे है मंजूरी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है आज कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजा करी घोषित। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: मीडियम FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। सबसे पहले सुनिए फिल्म कटी पतंग से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे गीत को। संगीत है RD बर्मन का।

कहो ना प्यार है। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है इब्राहिम अश्क ने, आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अलका याग्निक ने, और संगीत है राजेश रोशन का।

ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए अब सुनिए धड़कन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत है नादिम श्रवण का और आवाज़ें हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की।

लीजिए अब सुनिए सोनू निगम की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को। संगीत दिया है अजय अतुल ने। फिल्म का नाम है अग्निपथ।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म आज का अर्जुन से, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। शब्द रचना अनजान के हैं, संगीत है बप्पी लहरी का।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6:48 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत से संबंधित अपील के बाद प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों ने अपने काफिले के वाहनों की संख्या में कटौती की। सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए करीब 65 लाख रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने भी अपने आधिकारिक काफिले में चलने वाले वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री डेका ने आम जनता से भी मितव्ययता बरतने का आह्वान किया है।

0: वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन संरक्षण और संसाधनों का संयमित उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की दिशा में कार्यवाही शुरू की जाएगी।
1: प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें, सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें, तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है। आने वाले समय में हम लोग ईवी पर विशेष जोर देंगे।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्र अपने परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट और उमंग ऐप पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित सेमिनार और समीक्षा बैठक में बताया कि ये व्यवस्था 1 जुलाई से देशभर में लागू की जाएगी। श्री पासवान ने कहा कि इससे ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा और पंचायत कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, समय पर भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण को मजबूती मिलेगी, जिससे में विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा गया कि जनता ने विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। पार्टी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने मोदी गारंटी के कई प्रमुख वादे पूरे किए हैं। बैठक में नक्सल उन्मूलन पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की गई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर पदों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित करने की घोषणा की है। ये परीक्षा रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य के सभी 33 जिलों में होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 15 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इधर वन विभाग में वन रक्षक के 1484 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेज दी गई है। लिखित परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवास और पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक योजना के 21 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। ये हादसा कल शाम दल्ली राजहरा नगर में उस समय हुआ जब मजदूर बीएसपी की सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी के धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही

0: परिवार के चार लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखा गया करीब 65.5 लाख रुपए नकद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अब तक जिले में 7 करोड़ रुपए से अधिक की नकद राशि के साथ ही 8 किलो 200 ग्राम सोना बरामद किया जा चुका है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और उससे जुड़े आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई करते हुए रायगढ़ पुलिस ने एक संगठित सट्टा सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.2 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद की है। साथ ही नोट गिनने की मशीन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री सहित 1.3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई है। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्र रिले करेंगे। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने सीएसएमसीएल में हुए ओवरटाइम भुगतान मामले में सीडीएल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एन उदय राव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही 7 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जा चुके हैं। उदय राव पर फील्ड संचालन में बिलिंग समन्वय और भुगतान की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच ओवरटाइम बोनस, 4 अतिरिक्त दिवस भुगतान और सर्विस चार्ज के रूप में मैन पावर एजेंसियों को लगभग 183 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं आज शाम राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3% दर्ज की गई है। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर 3री से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज बिलासपुर स्थित जिला और सत्र न्यायालय में सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय ने महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष सहित 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर परीक्षा संचालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। महासमुंद जिले में महतारी वंदन योजना के तहत ई केवाईसी के एवज में हितग्राहियों से राशि मांगने के आरोप में 4 सीएससी संचालकों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। बीजापुर जिले में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से नागरिकों को आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 14 मई को कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत से संबंधित अपील के बाद प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों ने अपने काफिले के वाहनों की संख्या में कटौती की। सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 65.5 लाख रुपए नकद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम जयमाला में। मैं हूं अनुराधा, आपके आज के संगीत के सफर की साथी। लीजिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कौन व हवन सामग्री।
1: भारत का गौरव है, स्वाभिमान है, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: जल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े, भारतीय सेना।
1: कैलाश खेर और साथियों की आवाजों में भारतीय सेना गीत अभी आप सुन रहे थे। लीजिए जयमाला की अगली पेशकश।

0: देव दर्शन थू
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
0: देव दर्शन थू।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे ब्लैकमेल फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

0: किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत। सागर फिल्म से ये गीत था।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर।

0: संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। जयमाला के शेष गीत कुछ ही पलों में।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म से, गुलजार ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत। और अब अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, प्रेम पुजारी फिल्म का नाम है।

राग भैरवी पर आधारित ये गीत था और इसे आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। सरगम फिल्म से इसे लिया गया था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राग झंझूटी पर आधारित।

जिद्दी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। इस गीत के साथ ही आज का राग अनुराग प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। आपको बता दें कि ये गीत राग मिश्र पीलू पर आधारित था।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम।

0: के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सबरंग।

श्रोताओं, रात की इस सुहानी महफिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम सबरंग और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त प्रशांत कुमार साहू। श्रोताओं, दिन भर की तेज गर्मी अब धीरे धीरे ढल चुकी है। सूरज की तपिश कम हो गई है लेकिन उसकी गर्माहट अब भी हवाओं में महसूस हो रही है। कहीं लोग घरों की छतों पर टहल रहे हैं, कहीं बच्चे अब भी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं ठंडी हवा का एक झोंका पूरे दिन की थकान को दूर कर रहा है। दोस्तों, गर्मी का मौसम जितनी परेशानी लेकर आता है उतनी ही यादें भी दे जाता है। आम की खुशबू, मटके का ठंडा पानी, शाम होते ही छत पर बिछती चारपाइयाँ और देर रात तक चलने वाली बातें, गर्मी का अपना अलग ही रंग होता है। तो आइए आज इस महफिल की शुरुआत करते हैं गर्मी के उसी एहसास के साथ, एक ऐसे गीत के जरिए जिसमें मौसम की नरमी भी है और रात की मिठास भी।

श्रोताओं, गर्मी की असली राहत अक्सर रात में महसूस होती है। पूरा दिन तपने के बाद जब हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है तो मन को अलग ही सुकून मिलता है। पहले के समय में लोग एसी या कूलर को ज़्यादा छतों की ठंडी हवा पर भरोसा करते थे। रात में आसमान के नीचे बैठकर बातें करना, तारों को देखना और दूर कहीं बजते रेडियो को सुनना, वो एहसास आज भी लोगों को उनकी यादों में जिंदा है। लेकिन दोस्तों, गर्मी की असली पहचान केवल रात नहीं बल्कि धूप भी होती है। वही धूप जो सुबह उम्मीद लेकर आती है, दोपहर में संघर्ष बन जाती है और शाम होते होते यादों में बदल जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, गांवों में सुबह की हल्की धूप से दिन की शुरुआत होती है। लोग अपने काम में लग जाते हैं, किसान खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। धूप उनके लिए परेशानी नहीं बल्कि उम्मीद होती है। और दोस्तों, बचपन की गर्मियों में तो धूप का मज़ा ही अलग था। दोपहर में आम तोड़ना, नल के पानी में भीगना और शाम होते ही आइसक्रीम वाले अंकल का इंतज़ार करना, ये छोटी छोटी बातें ही हमें गर्मी को खास बना देती है। तो आइए अब सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, जिंदगी भी धूप और छांव की तरह चलती रहती है। कभी कठिन समय आता है तो कभी सुकून भरे पल, लेकिन हर तपती दोपहर के बाद एक ठंडी शाम जरूर आती है। शायद यही वजह है कि लोग रात को सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। ऐसे समय में पुराने गीत और भी करीब लगने लगते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: दोस्तों, रात जब और भी गहरी होती जा रही है, हवा भी हल्की ठंडक महसूस होने लगी है, ऐसे समय में पुरानी यादें धीरे धीरे मन के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। किसी को अपना बचपन याद आता है तो किसी को गांव की गर्मी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आर्किया लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: तो दोस्तों, इसी मधुर गीत के साथ सबरंग का आज का ये सफर यहीं पूरा होता है। श्रोताओं, गर्मी हो या धूप हो या रात की ठंडी हवा, जिंदगी हर मौसम में कुछ न कुछ हमें नया सिखाती जरूर है। जाते जाते इस गर्मी के मौसम में अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तेज धूप में बाहर निकलते समय सिर को ढक कर रखें, जितना हो सके पानी पीते रहें। श्रोताओं, इस गर्मी को देखते हुए खाली पेट धूप में ज्यादा देर तक न रहें और दोपहर की तेज गर्मी में थोड़ा आराम जरूर करें। घर में मटके का पानी, नींबू पानी, छाछ या आम पना जैसी चीजें शरीर को राहत देती है, और अगर आसपास कोई बुजुर्ग या छोटा बच्चा हो तो उनका विशेष ध्यान जरूर रखें, क्योंकि मौसम चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, अपनों की परवाह और रिश्तों की ठंडक जिंदगी को हमेशा खूबसूरत बनाए रखती है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे एक नई रात, एक नए एहसास और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त प्रशांत कुमार साहू को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: 8:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: मेट्रो इन दिनों से ये गीत अभी आप सुन रहे थे और चित्रलोक के बाकी के नगमे एक अंतराल के बाद।

कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केके और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत बचना ए हसीनों फिल्म का नाम है।

मोहित चौहान की आवाज में ये गीत फिल्म ऊंचाई से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की

0: अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत

0: अनंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉक्टर सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए कार्यक्रम प्रस्तुत है आपके लिए।

एक दूजे के लिए, ये था फिल्म का नाम और आनंद बख्श के लिखे बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म कभी कभी से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत। आपके लिए ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए। फिल्म चांदनी से ये गीत आनंद बख्शी के लिखे बोल शिव हरी का संगीत

फिल्म चांदनी से आप ये गीत अभी सुन रहे थे। ये गीत सुनिए फिल्म सिलसिला से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजें।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कोरा कागज से, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार दोस्तों, रेडियो के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे भारतीय सिनेमा के उस सफ़र पर जहां दोस्ती भी थी, दर्द भी था, हंसी भी थी और खौफ भी था। एक ऐसी फिल्म जिसके संवाद आज भी लोगों की ज़ुबान पर ज़िंदा हैं, एक ऐसी कहानी जिसके किरदार आज भी हमारे बीच सांस लेते हुए महसूस होते

करते हैं। सन 1975 जब हिंदी सिनेमा में एक्शन और मसाला फिल्मों का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसी समय लेखक जोड़ी सलीम खान और जावेद अख्तर ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें दोस्ती, बदला, हास्य और दर्द सब कुछ मौजूद था। वे केवल डकैतों वाली साधारण फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, वे ऐसी कहानी बनाना चाहते थे जिसमें हर किरदार लोगों के दिलों में बस जाए। जब यह कहानी निर्देशक रमेश सिप्पी को सुनाई गई तो उन्हें एहसास हो गया कि ये फिल्म कुछ अलग बनने वाली है। श्रोताओं, क्या आपने कभी कल्पना किया है कि इस फिल्म को बनाने में कितनी मुश्किलें आई होंगी, कैसे चुने गए होंगे इसके कलाकार, कैसे बना होगा हिंदी सिनेमा का सबसे खतरनाक खलनायक, और कैसे रिकॉर्ड हुए होंगे वो गीत जिन्हें आज भी लोग पूरे दिल से गाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यादगार सफ़र।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: श्रोताओं, फिल्म के लिए वीरों के किरदार में धर्मेंद्र लगभग तय थे। उस समय वे बड़े सितारे थे, लेकिन जय के लिए निर्देशक सोच में थे। तभी सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। उस दौर में अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे, उनकी कई फिल्में सफल नहीं हुई थी, लेकिन सलीम जावेद को उनकी गंभीर आवाज़ और अभिनय पर पूरा भरोसा था, और शायद यही भरोसा आगे चलकर इतिहास बन गया। दो दोस्तों की वही अमर जोड़ी बाद में भारतीय सिनेमा की पहचान बन गई। इस गीत की शूटिंग आसान नहीं थी। बाइक और साइड कार वाले दृश्य कई बार फिल्माए गए। उस समय आज जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी, इसलिए छोटे से छोटे दृश्य को भी सही तरीके से शूट करने में घंटों लग जाते थे। लेकिन निर्देशक रमेश सिप्पी हर दृश्य को वास्तविक बनाना चाहते थे। यही कारण है कि आज भी यह गीत केवल एक गाना नहीं बल्कि दोस्ती की पहचान मानी जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है उस गांव की ओर जहां पूरी फिल्म की आत्मा बसती है, रामगढ़। फिल्म के लिए असली जैसा गांव चाहिए था। बहुत खोजने के बाद कर्नाटक के रामनगर इलाके को चुना गया। वहीं पत्थरों और पहाड़ियों के बीच पूरा रामगढ़ बसाया गया। तेज धूप, कठिन मौसम और लंबी शूटिंग के कारण कलाकारों और तकनीशियनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों के बीच एक ऐसा खलनायक जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा डर बन गया। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गब्बर सिंह की। इस किरदार को निभाया अमजद खान ने, लेकिन शुरुआत में निर्माता उनकी आवाज़ को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्हें लगता था कि आवाज़ उतनी भारी नहीं है। पहले ये भूमिका डैनी को मिलने वाली थी, लेकिन वे दूसरी फिल्म में व्यस्त हो गए। इसके बाद अमजद खान को मौका मिला और उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि गब्बर इतिहास बन गया। उस दौर के कलाकारों के अनुसार

शूटिंग के दौरान अमजद खान अपने किरदार में इतना डूब जाते थे कि सेट का माहौल सचमुच बदल जाता था। और इसी गंभीर माहौल के बीच फिल्म में एक ऐसा गीत भी आया जिसने दर्शकों को बिल्कुल अलग रंग में रंग दिया। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का वो गीत जिसने अपनी धुन और अंदाज से हर किसी को चौंका दिया था।

डर था कि दर्शक इस तरह के प्रयोग को स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो यही गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया। अब अगर शोले की बात हो और बसंती का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हेमा मालिनी द्वारा निभाया गया बसंती का किरदार लोगों के दिलों में बस गया। उसकी बातें, उसका अंदाज और उसकी चंचलता, सब कुछ अलग था। लेकिन फिल्म में केवल हंसी और मजाक ही नहीं, कुछ ऐसे दृश्य भी थे जिनमें भावनाएं और दर्द दोनों दिखाई देते थे, और इन्हीं भावनाओं के बीच आता है रंगों से भरा एक यादगार गीत। आइए सुनते हैं शोले फिल्म का एक और खूबसूरत नगमा।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना महबूबा महबूबा ये गीत। श्रोताओं, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस गीत को खुद संगीतकार आर डी बर्मन ने गाया था। उनकी आवाज़ पारंपरिक गायकों से अलग थी। रिकॉर्डिंग के दौरान संगीत में विदेशी अंदाज मिलाया गया था, जो उस समय एक बड़ा प्रयोग माना जाता था। फिल्मी गलियारों में एक मशहूर किस्सा सुनने को मिलता है कि शुरुआत में कुछ लोगों को

0: क्या हो राजा?
1: आ जाओ।
0: होली होली।
1: भाव की होली और नखरे

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना होली के दिन दिल खिल जाते हैं। इस गीत को आवाज दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस दृश्य को शूट करना आसान नहीं था। रंगों, भीड़ और बड़े सेट के कारण कई बार शूटिंग रोकनी पड़ी। कैमरों और कपड़ों को रंगों से बचाना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस गीत की सबसे खास बात यही थी कि यह फिल्म के माहौल को अचानक खुशी से डर की ओर मोड़ देता है। अब कहानी पहुंचती है उस किरदार तक जिसके चेहरे पर दर्द था लेकिन आवाज में बदले की आग। संजीव कुमार द्वारा निभाया गया ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। घंटों तक एक ही मुद्रा में रहना आसान नहीं था, लेकिन संजीव कुमार ने अभिनय से इस किरदार को अमर बना दिया। श्रोताओं, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस फिल्म का अंत पहले अलग रखा गया था। मूल कहानी में ठाकुर खुद गब्बर को मार देता है, लेकिन सेंसर बोर्ड को लगा कि यह कानून अपने हाथ में लेने जैसा संदेश देगा। इसके बाद फिल्म का क्लाइमेक्स बदल दिया गया। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं इस फिल्म का भावुक कर देने वाला और डर और दर्द और बेबसी दर्शाने वाला ये गीत।

श्रोताओं, जब फिल्म रिलीज हुई तब शुरुआती दिनों में इसकी प्रतिक्रिया सामान्य थी। कुछ लोगों को फिल्म लंबी लगी, लेकिन धीरे धीरे दर्शकों ने इसके संवाद दोहराने शुरू कर दिए। सिनेमाघरों में सीटियां और तालियां गूंजने लगी और फिर शोले इतिहास बन गई। दोस्तों, शोले केवल एक फिल्म नहीं थी, यह भारतीय सिनेमा की वो कहानी थी जिसने दोस्ती को नया अर्थ दिया, खलनायक को नई पहचान दी और संवादों को लोगों की रोज़मर्रा की भाषा बना दिया। आज भी जब कोई कहता है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं शोले फिर से जिंदा होती है। इसी के साथ आज का यह विशेष कार्यक्रम यही समाप्त होता है। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है कभी कभी किसी से, न जीते बनता है न मरते बनता है, दिल टूट फूट जाता है, जिंदगी बेरंग सी नजर आने लगती है और जिंदगी का सफर टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुनसान रास्तों की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बेहद त्रासद है इन दिनों बीमार लोगों में खोजना खुद को, पता नहीं कब छूकर जिसे जागेंगे एहसास, लंबी बेहोशी के बाद पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा, पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा।

नहीं पाते। आह, कैसा दर्द होता है ये। और हम तब चुपचाप भारी कदमों से लौट आते हैं फिर से उसी रंगहीन दुनिया में। दस्तक दी मैंने, खुला नहीं दरवाजा, खटखटाया बार बार, दीवार थी वहां, हाँ दरवाजे में।

एक सुकून भरे रिश्ते की तलाश सभी को होती है ना? आपको भी है ना? पर कहाँ मिलता है वो रिश्ता हर एक को? शब्द चाहिए थे मुझे, प्यार भरे शब्द। कहीं कहीं कुछ शब्द मिले भी, पर अफसोस उनमें अर्थ नहीं था, भाव नहीं था, एहसास भी नहीं था। अब ऐसे शब्दों का क्या करती मैं?

कभी कभी आपको रौंदकर भी गुजर जाते हैं कुछ लोग, और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुभन को सहते चले जाते हैं, सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा ढल रही हूं मैं, रात बनकर उतर रही हूं मैं, जिंदगी जी रही हूं या जिंदगी को कुतर रही हूं मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल।

0: और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2020.